0: चक्री पगड़ी बांध रे बाबू हा बाबा दुराई ए हा बाबा दु चक्री पगड़ी फल लगा गो कंदे पर सती खा लो अरे कला गो तणो तण के तुम छोरी बुलाए जाओ
1: रात रो टुवाल घाल मिले चाहे अड़ी
0: घाल मिले रे भगवान
1: हां हां।

0: साथ में जय गुणा
1: महाराज की जय।
0: राम राम
1: महाराज की जय।
0: सम की माता की जय।

0: ढोल मारो रे नंगरे माहिरे लाकुशी गोला जग रे बापू ताने मोटियार नाई
1: धाटी धाटी आने।

0: चाकरी पगड़ी भंदरे बाबू हा बाबा दुराई ए हा बाबा दु चाकरी पगड़ी भंदलो कला गो कांदे पर छती खालो अरे कला गो तणो तण के गो तुम छोरी बुलाए जाओ
1: रात रो टुवाल घर में ले जाए अड़ी
0: घर में ले रे भगवान
1: हां हां
0: बोलो।